0: उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं।
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: ताकि उन पर खंगर बरसाएं।
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहां से निशान कर दिए गए हैं।
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: तो वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया।
1: फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन
0: और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया।
1: वतरकना फीहा आयतन लिल्लजीन यखाफून العذاب الالیم
0: और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए वहां निशानी छोड़ दी।
1: वफी मूसा इज अरसलनाहु इला फिरऔन बिसुल्तान मुबीन
0: और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने उनको फिरऔन की तरफ खुला हुआ मौजजा देकर भेजा।
1: फतवल्ला बिरुक्निही वकाल साहिरुन औ मजनून
0: तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो जादूगर है या दीवाना।
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको दरिया में फेंक दिया और वो काम ही काबिले मलामत करता था।
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
0: और आद की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर ना मुबारक हवा चलाई।
1: मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम
0: वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती।
1: वफी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन
0: और कौम समूद के हाल में भी निशानी है जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो।
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे।
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين
0: फिर वो न तो उठने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे।
1: وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين
0: और इससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे बेशक वो नाफरमान लोग थे।
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
0: और आसमानों को हम ही ने हाथों से बनाया और हमको सब मकदूर है।
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون
0: और जमीन को हम ही ने बिछाया तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं।
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: और हर चीज की हमने दो किस्में बनाई ताकि तुम नसीहत पकड़ो।

0: मैं उनसे तालिब रिज्क नहीं और न ये चाहता हूं कि मुझे खाना खिलाए।
1: इन अल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन,
0: खुदा ही तो रिज्क देने वाला जोरावर और मजबूत है।
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ,
0: कुछ शक नहीं कि उन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है जिस तरह उनके साथियों की नौबत थी, तो उनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए।
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ,
0: जिस दिन का उन काफिरों से वादा किया जाता है उससे उनके लिए खराबी है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: वत्तूरी वकिताबिन मस्तूर,
0: कोहे तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है।
1: फी वक्तिन मंशूर,
0: कुशादा औराक में।
1: वल बैतिल मअमूर,
0: और आबाद घर की।
1: वस्सक्फिल मरफूअ,
0: और ऊंची छत की।
1: वल बहरिल मसजूर,
0: और उबलते हुए दरिया की।
1: इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ,
0: कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़िअ होकर रहेगा।
1: मा लहू मिन दाफ़िअ,
0: और उसको कोई रोक नहीं सकेगा।
1: यौम तमूरु समाउ मौरा,
0: जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर।
1: वतसीरुल जिबालु सैरा,
0: और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर।
1: फवैलुन यौम इज़िल लिल मुकद्दिबीन,
0: उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है।
1: الذين هم في خوض يلعبون,
0: जो खौज बातिल में पड़े खेल रहे हैं।
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا,
0: जिस दिन उनको आतिश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे।
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون,
0: यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे।
1: अफसिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून,
0: तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता।
1: इस्ला

0: क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं, बल्कि ये लोग हैं ही शरीर।
1: अम यकूलून तकव्वलहु बल ला युमिनून,
0: क्या कुफार कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अस खुद बना लिया है, बात यह है कि ये खुदा पर ईमान नहीं रखते।
1: फल्यक्तू बिहदीसिम मिथलिही इन कानू सादिकीन,
0: अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो लाएं।
1: अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून,
0: क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं।
1: अम खलकू समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून,
0: या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते।
1: अम इंदहुम खजाइन रब्बिक अम हुमुल मुसैतिरून,
0: क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं, या ये कहीं के दारोगा हैं।
1: अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिउन फीहि फल्याति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन,
0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं, तो जो सुनाता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून,
0: क्या खुदा की तो बेटियां और तुम्हारे बेटे।
1: अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग्रमिन मुथ्कलून,
0: ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम उनसे सिलह मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है।
1: अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून,
0: या उनके पास गैब का इल्म है कि वो उसे लिख लेते हैं।
1: अम युरीदून कैदन फल्लजीन कफरू हुमुल मकीदून,
0: क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं, तो काफिर तो खुद दाव में आने वाले हैं।
1: अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुबहानल्लाह अम्मा युश्रिकून,
0: क्या खुदा के सिवा उनका कोई और माबूद है, खुदा उनके शरीक बनाने से पाक है।
1: वा

0: खुदा।
1: वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। खुदा ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज जन्ने फासिद और ख्वाहिशाते नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है।
0: अम लिल्इंसानि मा तमन्ना,
1: क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है।
0: फलिल्लाहिल आखिरतु वल औला,
1: आखिरत और दुनिया तो खुदा ही के हाथ में है।
0: वकम

0: उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से।
1: फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ,
0: गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون,
0: यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे।
1: يطوفون بينها وبين حميم آن,
0: वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान,
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।
1: फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: ज़वाता अफ़नान,
0: उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।
1: फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: फ़ीहिमा अय्नान तजरियान,
0: उनमें दो चश्मे बह रहे हैं।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فيهما من كل فاكهة زوجان,
0: उनमें सब मेवे दो दो किस्म के।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: मुद्द

0: अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश के उससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है और दुनिया की जिंदगी तो मताए फरेब है।
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता।

0: छीलता रहता था। वल्लाह, इस वक्त मैं हुजरे में बैठा अपने तीर छील रहा था। मेरे पास उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी और जो खबर आई थी उससे हम शादाओं फरहा थे कि इतने में अबू लहब अपने दोनों पांव बुरी तरह घसीटता हुआ आ पहुंचा और हुजरे के किनारे पर बैठ गया। उसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। अभी वो बैठा ही हुआ था कि अचानक शोर हुआ। ये अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आ गया। अबू लहब ने उससे कहा, मेरे पास आओ, मेरी उम्र की कसम तुम्हारे पास खबर है। वो अबू लहब के पास बैठ गया। लोग खड़े थे। अबू लहब ने कहा, भतीजे बताओ लोगों का क्या हाल रहा। उसने कहा, कुछ नहीं, बस लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई और हमने अपने कंधे उनके हवाले कर दिए। वो हमें जैसे चाहते थे कत्ल करते थे और जैसे चाहते थे कैद करते थे, और खुदा की कसम मैं उसके बावजूद लोगों को मलामत नहीं कर सकता। दर हकीकत हमारी मुठभेड़ कुछ ऐसे गोरे चिट्टे लोगों से हुई थी जो आसमान और जमीन के दरमियान घोड़ों पर सवार थे। खुदा की कसम ना वो किसी चीज को छोड़ते थे और ना कोई चीज उनके मुकाबले टिक पाती थी। अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से खैमे का किनारा उठाया, फिर कहा, वो खुदा की कसम फरिश्ते थे। ये सुनकर अबू लहब ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं उससे लड़ पड़ा लेकिन उसने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। फिर मेरे ऊपर घुटने के बल बैठकर मुझे मारने लगा। मैं कमजोर जो ठहरा, लेकिन इतने में उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर खैमे का एक खंबा लिया और उसे ऐसी जर्ब मारी कि सर में बुरी तरह चोट आ गई, और साथ ही बोली, इसका मालिक नहीं है इसलिए इसे कमजोर समझ रखा है। अबू लहब रुस्वा होकर उठा और चला गया। उसके बाद खुदा की कसम सिर्फ 7 रातें गुजरी थी कि अल्लाह ने उसे अच्छा एक किस्म का ताउन में मुब्तला कर दिया और उसका खात्मा कर दिया। अच्छा की गिल्टी को अरब ने बहुत मनहूस समझते थे। चुनाचे मरने के बाद उसके बेटों ने भी उसे यूं ही छोड़ दिया और वो 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। कोई उसके करीब ना जाता था और ना उसकी तदफीन की कोशिश करता था। जब उसके बेटों को खतरा महसूस हुआ कि इस तरह छोड़ने पर लोग उन्हें मलामत करेंगे, तो एक गड़ा खोदा, उसमें लकड़ी से उसकी लाश धकेल दी और दूर ही से पत्थर फेंक कर छुपा दी। गर्ज इस तरह अहले मक्का को मैदान बदर की शिकस्त फाश की खबर मिली और उनकी तबीयत पर उसका नहायत बुरा असर पड़ा। हत्ता कि उन्होंने मकतूलीन पर नोहे करने की ममानियत कर दी ताकि मुसलमानों को उनके गम पर खुश होने का मौका न मिले। इस सिलसिले का एक दिलचस्प वाकया ये है कि जंगे बदर में अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए, इसलिए वो उन पर रोना चाहता था। वो अंधा आदमी था। एक रात उसने एक नोहा करने वाली औरत की आवाज सुनी। झट अपने गुलाम को भेजा और कहा, जरा देखो क्या नोहे करने की इजाजत मिल गई है। क्या कुरैश अपने मकतूलीन पर रो रहे हैं ताकि मैं भी अपने बेटे अबू हकीमा पर रोऊं, क्योंकि मेरा सीना जल रहा है। गुलाम ने वापस आकर बताया कि ये औरत तो अपने एक गुमशुदा ऊंट पर रो रही है। अस्वद ये सुनकर अपने आप पर काबू ना पा सका और बेइख्तियार कह पड़ा, क्या वो इस बात पर रोती है कि इसका ऊंट गायब हो गया और उस पर बेख्वाबी ने उसकी नींद हराम कर रखी है? तो ऊंट पर ना रो बल्कि बदर पर रो, जहाँ बनी हसीस, बनी मखजूम और अबुल वलीद के कबीले के सरबरा वारिद अफराद हैं। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो, जो शेरों का शेर था। तू उन लोगों पर रो और सबका नाम ले, और अबू हकीमा का तो कोई हमसर ही ना था। देखो उनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए कि अगर बदर का दिन ना होता तो वो सरदार ना हो सकते थे। मदीने में फतह की खुशखबरी। इधर मुसलमानों की फतह मुकम्मल हो चुकी तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को जल्द अज जल्द खुशखबरी देने के लिए 2 कासिद रवाना फरमाए। एक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अवाली के बाशिंदों के पास भेजा गया था, और दूसरे हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें ज़ेरीन मदीना के बाशिंदों के पास भेजा गया था। सामईन, यहाँ पर एक वक्फा, और वक्फे से वापस आकर हम अपने इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम सामईन मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 यूसीपी की दुनिया से سامعین موجودہ دور جہاں چیٹ جی بی ٹی اور دیگر اے آئی ٹولز نے انقلاب برپا کر رکھا ہے وہاں پرومپٹ انجینئرنگ ایک نہایت اہم مہارت بن کر ابری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ پرومپٹ انجینئرنگ ہے کیا یہ کیسے کام کرتی ہے اور روزمرہ زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے آج ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس انیلا محمود جو نہ صرف اس فیلڈ میں عملی تجربہ رکھتی ہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں مس انیلا آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے شو میں
6: وعلیکم السلام مس آمنہ محمود آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں آئی ہوں جو کہ ایک پرومپٹ انجینئرنگ ہے اور پرومپٹ انجینئرنگ ہماری بہت سی چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی ہے آج کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہمارے لسنرز کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہماری یہ فیلڈ کہاں کہاں ہمیں فائدہ دے سکتی ہے یہ سارا ہم دیکھیں گے
5: جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں جو ہمارے لسنرس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک کے بارے میں ہم اویئرنیس دے سکیں تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف سب سے پہلے تو مس انیلا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ ہے کیا
6: جی مس آمنہ میں آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ کے بتانے سے پہلے میں آپ سے اے آئی کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اے آئی جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجیز میں ہے اور اے آئی کے بغیر اس ٹائم ایسا لگتا ہے کہ چیزیں بالکل نامکمل ہو چکی ہیں اے آئی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کام کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سمپل ایک انٹیلیجنس ہے جو کہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی گئی ہے ہیومن انٹیلیجنس کو چینج کر کے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے اور دین اسے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے کام کرے گا اب یہ جو چیز ہم اس کو بتا رہے ہیں یا ہم اس کو کمانڈ دے رہے ہیں کہ ہماری جو پرومپٹ انجینئرنگ ہے وہ اسے کمانڈ کرتی ہے کہ یہ کیسے یوز ہوگا اس کے لیے ہم ایک کمانڈ جیسے اب ہم انسان کو ایک بات کہتے ہیں ہم آپ کو کوئی کام کہیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے کر دو اب ایک انسان جو ہے وہ جب وہ کام کرتا ہے اگر ہم اس کو صحیح سے نہیں بتائیں گے کہ کام کیا کرنا تھا اور کتنی دیر میں کرنا تھا تو وہ جو ہے وہ ہمیں اتنی جلدی اس کا آنسر نہیں کرے گا اس کا اگر ہم اس کو زیادہ کلیئر طریقے میں بتائیں گے کہ یہ ایک کام ہے اور آپ نے اتنی دیر میں کرنا ہے ایسے کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے تو دین آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ چیز کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو یہی ساری چیز جب ہم لوگ ایک مشین کو بتا رہے ہوتے ہیں دیٹ از یور اے آئی مشین تو اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از کالڈ یور پرومپٹ انجینئر
5: یہ سکل اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی آج کل
6: کیونکہ آج کل جو ہے ہمارے ٹائم پہ کیونکہ اے آئی کا دور چل رہا ہے جیسے جیسے اے آئی بڑھتی جا رہی ہے تو اے آئی سے جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے یا ہم اسے کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں تو اس کو لکھنے کے ڈفرنٹ میتھڈ آ جاتے ہیں تو اب یہ جو ہم اس سے چیزیں پوچھ رہے ہیں جیسے جیسے اے آئی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ہماری ہر فیلڈ میں اس ٹائم بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے بے شک وہ بزنس کی فیلڈ ہو ایجوکیشن کی فیلڈ ہو ہیلتھ کی فیلڈ ہو ہر جگہ پہ آپ کا اے آئی جو ہے وہ انوالو ہو چکا ہے تو اے آئی انوالو ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ساتھ ہمیں हमें जो है इसके साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी लेकर चलना पड़ रहा है।
5: आप हमारे सुनने वालों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में बताएं ताकि उनको थोड़ा बेहतर आगाही हो सके कि ये एक्चुअली किस तरह काम कर रही है।
6: जी बिल्कुल, इसके बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेस हैं इस टाइम आपके जो हैं वो अगर आप देखें तो नॉर्मली जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इस टाइम चीज़ चल रही है कि स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस टाइम आपके सोशल मीडिया के, आपकी ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, आपको कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है उसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपने कोई जो है सिंपल अगर आपने कोई डाटा को एनालिसिस करना है उसके लिए आप जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप AI के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। अब AI को आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ जो है, जैसे अगर मैं कोई ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं AI को कहती हूँ कि मुझे जो है वो एक ब्लॉग जनरेट करके दे दें जो कि इतने वर्ड्स के ऊपर बेस करता हो और उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो सारी हों। तो ये जो है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बगैर मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अब आप अगर AI है, इसके एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपका एक OS है, OS और मशीन दोनों का कम्बिनेशन होता है, अगर मशीन के अंदर आप OS नहीं करेंगे तो मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करती। इसी तरह से अगर आपने AI बना लिया और AI को आप सही तरह से जो है वो चीज़ें बता नहीं पा रहे कि उसे किस तरह से करनी चाहिए, तो वहाँ पे फिर आपको जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प लेनी पड़ती।
5: अच्छी प्रॉम्प्ट और बुरी प्रॉम्प्ट में फ़र्क क्या है और इसको बेहतरीन तरीके से हम किस तरह लिख सकते हैं?
6: अच्छा, अच्छी प्रॉम्प्ट आपके पास वो होती है जो कि आप बड़ी स्पेसिफिक हो, उसके अंदर चीज़ें क्लियर हों, आपके जो है ChatGPT को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो उसको रीड करते हुए। यहाँ पे मैं ChatGPT का वर्ड इससे यूज़ करी क्योंकि आजकल ChatGPT बहुत ज़्यादा इन है। अदरवाइज़ ये जो आपकी जितने भी AI टूल्स हैं, बेशक अभी आप देखें तो अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो DeepSeek चल रहा है।
5: हाँ जी।
6: इसके अलावा और आप गूगल के लिए भी कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं या आपके कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम क्वेश्चन आंसर के आपके चैट बोर्ड्स आ चुके हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो आपका जो है जो सबसे ज़्यादा ये है कि आपके पास इसको आप यूज़ करते हैं, और जो आपकी जितनी जो अगर आप कहें कि जो अच्छी मेरी प्रॉम्प्ट है वो ये होगी कि वो बड़ी स्पेसिफिक हो और बड़ी क्लियर हो और अंडरस्टैंडिंग हो। और बुरी प्रॉम्प्ट वो ऐसे है कि अगर आप कह देते हो कि अगर मैं कह देती हूँ कि यू आर जस्ट राइट अ लेटर, अब ये जो लेटर है उसको समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का लेटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी प्रॉम्प्ट लिखें तो आप उसे बताएंगे कि आपने इस पर्सन के लिए लेटर लिखना है, इस लेटर के अंदर आपने ये चीज़ बतानी है और ये लेटर आपने इस पर्सन को आगे जो है वो भेजना है, तो वो उस लिहाज से उस लेटर को जो है वो आपका तरतीब करेगा। तो ये आपकी जो है एक अच्छी प्रॉम्प्ट होती है।
5: अभी आप मिस अनिला जिक्र करती ChatGPT का, तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि ChatGPT जैसे टूल में इसका क्या रोल है?
6: ChatGPT के रोल इसमें ये रोल है इसका, क्योंकि इस टाइम जो है मॉडर्न जो इस टाइम चल रहा है एरा, उसमें ज़्यादातर जो है वो हर कोई जो है मोस्ट नॉर्मली हर पर्सन अब फेमिलियर है ChatGPT के साथ, और ChatGPT जैसे जैसे इन होती जा रही है तो उसको जो है उसे क्वेश्चन पूछने के जो हमारा वे ऑफ टॉक है ChatGPT के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं, हम जैसे उससे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें उसी तरह से आंसर देता है। तो इसीलिए ChatGPT और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक हो गए हैं कि अगर आप ChatGPT से सही से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते।
5: जो मिस अनिला हमारे सुनने वालों को बताएं कि वो चंद कौन सी गलतियां हैं जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हुए नॉर्मली कर देते हैं।
6: नॉर्मली हम जो है प्रॉम्प्ट लिखते हुए जो मेजर मिस्टेक करते हैं, हम लोगों को लगता है कि शायद एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लॉन्ग प्रॉम्प्ट होती है वो हमारा जो भी हमारा AI का टूल है उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, उसे समझ नहीं आती कि मुझे इसके अंदर से क्या काम करना है, तो इसीलिए जो है हम इसको जो है वो इग्नोर करते हैं।
5: क्या आप किसी ऐसी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गलती बता सकते हैं जिसने AI को कम्प्लीटली फेल कर दिया हो?
6: वैसे तो इसमें बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने जैसे कोई दी, जैसा कि मैंने उससे पूछा कि नेक्स्ट वीक में क्या जो है वो इवेंट होने वाला है। अब AI का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि AI जो है वो फ्यूचर के ऊपर काम नहीं करता, इसीलिए AI जो है वो इस तरह के आंसर्स नहीं देता, इस टाइम पे आपका AI जो है वो फेल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम उससे पूछते हैं कि लाइक फीलिंग ऑफ समवन, या जिसे हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड योर सेमेंटिक सर्च, इसके अंदर आप जो है वो सेंटिमेंट या सेमेंटिक से रिलेटेड से पूछ रहे होते हैं, तो आपका जो AI है वो इसका भी आंसर नहीं दे सकता। इसी तरह से मैथ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक अनसॉल्व पड़ी हुई हैं, और अनसॉल्व प्रॉब्लम को जब हम AI से कहते हैं कि इसको सॉल्व करें तो AI उसका भी आंसर नहीं दे सकता। तो ये वो इश्यूज हैं जो कि आपका जो है वो AI जब हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू हम उसे कुछ पूछ रहे होते हैं तो हमारा AI जो है वो फेल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने में।
5: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, और हमारी ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इसकी एक्सपर्ट भी हैं, मिस अनीला। इनसे अपनी बातों का सिलसिला जो सा है दोबारा शुरू करते हैं। मिस, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। हमारे सुनने वाले चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करने के लिए क्या वो ऐसा काम करें कि उनकी जो प्रॉम्प्ट लिखने का जो इंजीनियरिंग है या प्रॉम्प्ट लिखने का जो तरीका है वो इम्प्रूव कर सकें।
2: अच्छा मैं सामना, इसके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो जिस तरह मैं अभी बार बार एक चैट जीपीटी का नाम ले रही हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या करें कि चैट जीपीटी एक ही प्रॉब्लम की उसकी डिफरेंट तरह के वेज उसके ऊपर एंटर करें। जैसे जो है एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप 3 से 4 डिफरेंट वेज में जब आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हर दफ़ा उसका आंसर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो आपकी लिखी हुई चीज़ के ऊपर वो जो है वो आंसर कर रहा होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, इसके लिए आप जो है कुछ यूट्यूब के ऊपर बड़े ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इस चीज़ के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कोर्सरा के ऊपर अब बहुत ज़्यादा कोर्सेज इसके आ चुके हैं, तो इनको यूज़ करते हुए आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इसका जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है। अभी सुनने में लगता है कि शायद ये अभी बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन आने वाले वक्त में ओपन AI जितने भी टूल्स हैं आपके जो है, आपको पता है हर प्लेटफॉर्म अपना जो है वो टूल इंट्रोड्यूस कर रहा है, और हर प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अगर आप एक क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछेंगे वही क्वेश्चन आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पूछेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के आंसर। तो उस वजह से आपकी अगर प्रॉम्प्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपका जो है क्वेश्चन पूछने का जो वे है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको लग हो सकता है कि मे बी मिस्टेक के चांसेस कम हो, क्योंकि बैकएंड पे जो इनका सबका एल्गोरिथम है वो सेम होता है। तो इसीलिए जो है ये प्रैक्टिस के लिए मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप कोर्सरा से कोर्सेज करें, और प्रॉम्प्ट आप जो है वो चैट जीपीटी पर डिफरेंट तरह के दें, ताकि जितने आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट देंगे आपको रिजल्ट में डिफरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा।
1: अच्छा, मैं सभी आप बात कर रही थी कि एक ही सवाल को डिफरेंट तरीकों से लिखा जाए तो आपको डिफरेंस भी नजर आएगा। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने सवाल बदल बदल के पूछा तो विच वन इज द राइट आंसर, इस बारे में हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं?
2: असल में मेरे सामने ये जो है ये एक, क्योंकि ओपन AI टूल्स हैं तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि उसने जो आंसर दिया वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि रिसेंटली ओपन AI का जो सबसे बड़ा बग सामने आया था वो ये आया था कि वो हमारे साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, और उसकी वजह से हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा इशूज़ जो है, हम वही चीज़ जो है स्टूडेंट का इशू ये आ रहा था कि वो सेम चीज़ आगे जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते थे, और उसकी वजह से पता चलता था कि उनके मार्क्स वगैरह जीरो हो गए हैं, उनकी चीज़ें वगैरह किसी ने रिसर्च की है। और मेरे साथ खुद भी ऐसा हो चुका था कि मैंने कुछ उससे जो है वो रेफरेंसेस मांगे, और एक दो रेफरेंस स्टार्ट वाले तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन क्या हुआ कि जो तीसरा या चौथा रेफरेंस था वो मैंने ओपन किया तो वो रेफरेंस था ही नहीं, वो फेक जनरेटेड रेफरेंसेस थे। तो इट्स मींस कि अगर आप ये कहती हैं कि हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम ओपन AI पे भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जब वो रिजल्ट दे तो आप उसे एक दफ़ा गो थ्रू करें, और देन आपको आइडिया होगा कि क्या वो रिजल्ट मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं, और आपको फिर अपनी प्रॉम्प्ट चेंज करनी पड़ेगी। समटाइम जो है हम उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, हमें वो रिजल्ट उस तरह से नहीं मिलते, देन हम अपनी लाइन चेंज कर देते हैं, हमें लगता है कि शायद उसे वो बात समझ नहीं आ रही, और जैसे ही हम लाइन चेंज करते हैं तो वो हमें उसे बेहतर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें इंसान की अपनी थोड़ी खुद भी जो है वो एफर्ट होती है कि इंसान बिल्कुल भी जो है वो इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, थोड़ा खुद भी देखना होता है।
1: लेकिन मिस, कोई वेरीफाई करने का तरीका मौजूद है रिजल्ट्स को?
2: नहीं, अभी तक ओपन AI में इस तरह से अगर आप कहें कि वेरीफाई करने का है तो इस चीज़ के लिए नहीं है, मे बी इन फ्यूचर हो जाए, बट अभी जो करंट स्टेज चल रही है उसमें आप एज अ ह्यूमन ही जो है वो वेरीफिकेशन कर सकते हैं। इसी वजह से आपकी जो ओपन AI की जो जितनी भी कहते हैं कि ओपन AI मे बी शायद ह्यूमन को रिप्लेस कर दे, इसी इशू की वजह से ओपन AI जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये ट्रस्ट इशू ही आ रहा है कि आपका जो वो डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो जो ट्रेन होता है वो हमारे दिए हुए डाटा पे ट्रेन हो रहा होता है, और हमारा दिए हुए डाटा पे खुद से वो कोई डाटा जनरेट नहीं कर रहा होता। इस वजह से हमें जो है बिल्कुल उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और अभी तक ऐसा टूल भी नहीं है कि जो उसके दिए हुए को बताए कि उसने बिल्कुल ठीक काम किया, हमें उसको लाजमी तौर पर एक दफ़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही। प्रॉम्प्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करनी जरूरी है या किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, उर्दू में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में?
2: असल में ये हमारे जो अभी तक मोस्टली काम हुआ है ना, वैसे तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जैसे अभी उर्दू पे भी काम हो रहा है, लेकिन जो मोस्टली काम हुआ है वो इंग्लिश पे हुआ है। हमारे जितने भी मॉडल्स वगैरह जनरेट किए गए हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो है वो इंग्लिश के ऊपर है। उर्दू के ऊपर भी है, काम हो रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे हो रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है जितना अभी इस टाइम जो है वो करंटली इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है।
1: प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करने के कोई एथिकल कंसर्न्स भी हैं?
2: जी बिल्कुल, असल में इशू ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो सबसे मेजर इशू जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। इसका जो सबसे बड़ा इशू यह है कि ये हमारे साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जो बिल्कुल भी हमारे से रिलेट नहीं कर रही होती और वो मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा इशू है कि मैं अगर उसे एक प्रॉम्प्ट देती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसमें मैं कोई एविडेंस दिए बगैर ही उससे वो चीज़ मांग रही होती हूँ, और वो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे भी देगा, लेकिन इशू ये है कि वो इन्फॉर्मेशन एक मिस इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि वो उसने खुद जनरेट की होगी, उसके बैकएंड पे उसके बाद कोई एविडेंस नहीं होगा कि ये उसने कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट किया है, तो वहाँ पे ये जो है ये इशू खड़ा हो जाता है।
1: जैसे आपने कहा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अभी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, अगर इसको कोई एज अ करियर बनाना चाहे तो कोई स्कोप है?
2: जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्कोप है अब, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे चैट जीपीटी हमारे में हर फील्ड में इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो साथ साथ इवॉल्व हो रही है। इसके लिए अभी रिसेंटली गूगल ने जो है वो कुछ

0: हो, थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
1: जैसे कि अब देखें, मैं हूँ, मैं एज अ यूज़र जो है वो चैट जीपीटी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और मैं जो है वो एक प्रॉम्प्ट जनरेट करती हूँ। मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख देती हूँ कि आई नीड 10 ब्लॉग्स। अब ये जो मैंने आई नीड 10 ब्लॉग्स लिखे हैं, इसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि मुझे किस फील्ड से चाहिए, कहाँ से चाहिए। अब वो क्या करेगा, आपका जो चैट जीपीटी है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर इसी को मैं थोड़ा बेहतर करके लिखूँ, मैं उसे कहूँ कि मुझे 3 ऐसे प्रॉम्प्ट चाहिए जो कि इस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा रिजल्ट निकाल कर देगा जो मेरी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था और मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा। तो यहाँ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा तो आपको आंसर भी कभी भी ठीक नहीं मिलेगा।
2: जी लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहिए और सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
3: कहाँ

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। हम बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। अपनी गुफ्तगु का सिलसिला हम कंटिन्यू करते हैं। जी मिस, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बता रही हैं, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत ज़्यादा आगाह भी किया। आप हमें ये बताइएगा कि कोई एडवांस्ड टेक्निक्स भी आई हैं इसमें?
1: जी बिल्कुल, मेरे सामना अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो भी बेसिक लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कर रहे थे, लेकिन इसकी बहुत से एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं, जिनमें जो है जो सबसे पहले इसके एडवांस वर्जन है, डेट इज कॉल्ड योर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो अपने जो चैट GPT है उसको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसे लर्न करे, लर्न करके देन वो हमें उसे आंसर करे। हम कोई 2-3 एग्जांपल उसे देते हैं कि ये एग्जांपल है, इस तरह से आपने इसको जो है मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, देन वो उसको जो है वो पूरा अंडरस्टैंड करता है और फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो उसके मुताबिक हमें जनरेट करके देता है। और जो दूसरा वे है जो इस टाइम इसकी एडवांस टेक्निक में जा रहा है, डेट इज योर चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो अपना जो भी प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं, और समटाइम हमारा जो चैट GPT है उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में इश्यू होता है। तो चेन ऑफ थॉट के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करके और उससे स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें पूछते हैं। जिससे अब आप एक पेपर उसे लिखवाना चाह रहे हैं, अब उसे जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल एक पूरा पेपर जब भी आप मांगेंगे वो कभी भी आपको फुल पेपर नहीं देता है। आप क्या करते हैं, आप उसको ब्रेक कर देते हैं, आप उसे कहते हैं पहले मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, देन मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दे, तो देन वो कम्फर्टेबल होकर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। और इस तरह से जो है आपकी चीज़ें भी इंक्रीज हो जाती हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। और नॉर्मली जो चेन ऑफ थॉट्स है वो हम उसी टाइम यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, या हमारा जो है हमें जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो वहाँ पे हम चेन ऑफ थॉट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम डिवाइड कर देते हैं।
0: अभी आपने बताया फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के बारे में और

0: थॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में, कौन सी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है या आप किसको सजेस्ट करेंगी कि ज्यादा यूज करना चाहिए?
1: अब ये जो चीजें है ना, ये चीजें डिपेंड करती हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब जरूरी नहीं कि अगर मैं कहूँ कि इस प्रॉब्लम पे ये चीज बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि चेन ऑफ थॉट्स उस जगह पे बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई होती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप कम करने के लिए वहाँ पे जो है चेन ऑफ थॉट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हमें आंसर कर रहा होता है। और जहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होता है कि मुझे जो है वो एक चीज प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, तो वहां पे आप फिर जो है उसे कहते हैं कि ये फॉर्मेट है, इससे आप देखो और देन इसका आंसर करो। तो वहां पे फिर आपकी जो है वो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट को आप यूज कर रहे होते हैं।
0: वैसे तो आप

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life station of the nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम नखले अदब में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम का जो मौजू रखा है वो है मौजूदा दौर की शायरी, और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है शायर तजम्मुल काज़मी को। अस्सलामु अलैकुम तजम्मुल, कैसे हैं आप?
3: वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन, आप बताएं।
2: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे अंदाजा है कि कितनी टफ रूटीन होती है, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या जर्नी है टूवर्ड्स पोइट्री से रिलेटेड।
3: अच्छा, असल में बचपन से एक शौक़ था, एक कसक होती है कि यार मैं लिख नहीं पाता, तो मतलब शौक़ बहुत होता है मगर वो अख्तर उस्मान का शेर भी है ना, कहने का शौक़ हो मगर इतना हुनर ना हो। तो मैं स्केचिंग भी करता था और मैं सिंगिंग भी करता था और बाकी जो मजहबी कलाम वगैरह हैं वो भी पढ़ता था, तो शायरी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो एक होती है ना, आपके अंदर कसक होती है, तो वो जो एक नामुकम्मल और अधूरेपन का जो एहसास है वो फिर शायरी को जन्म देता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, तो वजन में नहीं होती थी चीज़ें, आधी वजन में आधी बेवजन है। तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते गए, मुशायरे सुनते गए, एक रुझान बनता गया, और फिर सर वाजिद अमीर मिले, उनका दस्ते शफकत सर पे पाया और इस्लाह होती गई, फिर लिखते चले गए।
2: आप खुद भी शायरी करते हैं और आपके इर्द गिर्द भी काफी शोरा हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो दौर की शायरी है वो इतनी सतही क्यों हो गई है, खास तौर पर जो यंगस्टर्स आके शायरी कर रहे हैं?
3: असल में हमारे यहाँ एक रुझान पाया जाता है हमारी सोसाइटी का, एक तो बिल्कुल तालीम से दूरी है, ठीक है, मतलब किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं है। दूसरा, अपनी ये लोग अपनी तहजीब से भी कटे हुए हैं, इनको मालूम नहीं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। और ये सतहीपन आपके तभी दर आता है जब जो मैसेज होते हैं ना, जो हुजूम होता है, आप जब उसके इंटेलेक्ट लेवल को अपील करते हो, तो जो सतहीपन है उनकी बातों में या उनकी सोच में, वही शायरी में भी दर आया। अब हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो अगले के नैरेटिव हैं, जैसे एक पॉपुलर नैरेटिव होता है, बहुत सी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो आपको मालूम है, तो वो ऐसा एक नैरेटिव वो तश्कील देते हैं जो मैसेज को अपील करता है, और मैसेज उसके ऊपर उठ के आते हैं और वो उनका साथ देते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सतही शायरी, और बुरी बात ये है कि सतही शायरी जो लोग कर रहे हैं वो लोग बददयानत हैं, कि ये ऐसी ही बात है कि मैं सच जानता हूँ मगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो अदब के साथ बददयानती है, मैं इसको ये समझता हूँ। और सतहीपन एक मैसेज को अपील करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी शोहरत के लिए उसका मिसयूज किया जा रहा है बस।
2: तो अगर एक ऑडियंस है वो उसको कंज्यूम कर रही है और उसको पसंद भी कर रही है, तो फिर तो शायर करेगा वैसी शायरी,
3: वो बात ठीक है। अब हम चीजों के अच्छे बुरे होने का जो एक पैमाना है वो ये है कि हम उसके आउटकम्स देखते हैं, उसके नतीज क्या है, ठीक है। आपकी अगर सतही शायरी से अगर लोग एंटरटेन होके घर जा रहे हैं, कोई उनके फिक्र के दरवाजे पे दस्तक नहीं हो रही, तो फिर उसका नतीजा क्या, उस एंटरटेनमेंट का क्या हमने करना है? तो मैं यही बात कर रहा था, हम लोग अपनी तहजीब से कटे हैं, और आजकल के मुशायरे भी हमारी जो तहजीब थी उससे कट गए, ना कि नौजवानों को इधर आकर एक सोच और फिक्र का उनके मतलब दरवाजे पे दस्तक होती। बात तो तब है ना कि आप शेर सुनो और आप उसे सोचने में मजबूर हो जाओ, तो क्या ये तहदारी, ये गहराई आजकल की शायरी में है? तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब वही जो नौजवानों के जज्बात हैं उनको शायरी में ढाल कर टिकटॉक पे डाला जा रहा है, वो वही बात है, मैसेज को अपील कर रही हैं चीज़ें, और उन्होंने उनको कंधों पे उठाया है और आजकल के वो किंग बने हुए हैं।
2: अच्छा, यहीं से मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आपको क्या लगता है कि शायरी क्या है? हम अगर बात करें तो ये एक आर्ट है, और अगर ये आर्ट है तो कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ आर्ट से कुछ सीखने नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसे एंटरटेन होने जा रहे हैं। तो आप इस डिबेट को कैसा देखते हैं और आपके नज़दीक शायरी क्या है?
3: शायरी मेरे करीब ये है कि मैं अगर एक शेर कहता हूँ और 100 साल बाद एक कारी मेरी किताब उठाकर वो शेर पढ़ता है तो वो शेर उस वक्त भी रेलिवेंट हो जिसके ऊपर ज़माने असर ना कर सकें, जो बिल्कुल अपनी हैबत के साथ वहाँ पे कायम हो, वहीं पे खड़ा हो। जिस तरह वो वली दखनी का शेर है कि और मुझ पास क्या है देने को, देख के तुझको रोए देता हूँ। तो ये आप देखें, तब तो उर्दू बिल्कुल बन रही थी, तश्कील जुबान तश्कील पा रही थी, तो 300 साल पुराना शेर है, तो ये शेर आज तक रेलिवेंट है। मतलब 3 सदियां गुजर गई हैं, शेर आज तक मतलब वो रेलिवेंट है। शायरी यही है कि जो हर जमाने में हर जमाने को अपने साथ सिंक करे और हर शख्स की नफ्सियात को अपील करे कि एक कॉमन आदमी जो है उसके जो मसाइल हैं, उसकी जो ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव है, ना हमवारियाँ हैं, वो उसको लिंक करती हो। क्योंकि शायर तो उसका शायरी जो है वो कथारसिस मीडियम है ना असल में, तो ऐसी शायरी जो सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक हो, हुल्लड़बाजी हुई, हूटिंग हुई, ये वो घर चले गए, तो ऐसी एक्टिविटीज़ का क्या हासिल है? कुछ हासिल नहीं है। अगर आपकी तनकीदी फिक्र वो चीज़ उजागर नहीं कर रही, अगर आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही, तो मैं तो उसको वक्त का ज़ाया समझता हूँ।
2: अगर हम इसी के साथ बात करें तो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम अपनी तहजीब से कट गए, और हम आजकल देखते हैं जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में मुशायरे होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि बंदा बैठ के उनको सुकून से सुन सके, हुल्लड़बाजी ही कह लें। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हम तहजीब से कट गए अपनी?
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने कल्चर से कट गए हैं, क्योंकि मुशायरे जो होते थे वो तरबियत गाह होती थी। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि बादशाह तक अपनी औलाद को वो जिनको अब हम लोग बुरे अल्फाज से जानते हैं उन अड्डों पे भेजा करते थे, और वो अड्डे आप इसकी भी हिस्ट्री देखेगा, ये जो हीरा मंडी हुआ करती थी ये गहवारा अदब था। इधर क्या नाम है, मौसीकार होते थे, स्कल्पचर जो बनाते हैं वो लोग होते थे, फन मुसवरी का मतलब जितने भी फ़नून लतीफ़ा की जो फील्ड्स हैं उनके उस्ताद जो लोग थे वो यहाँ पे ये गोरे ने ला के यहाँ पर ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया कि आज हम लोग उसको बुरा जानते हैं। मतलब हमारी जो तहजीब की धज्जियाँ हैं वो तो गोरे ने उड़ाई ना, कि हमारे बादशाह का लिबास हमारे वेटर को पहना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी तहजीब की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो उधर से आई है, बिल्कुल ये ब्रिटिशर्स ने की है। तो वो तरबियत गाहें होती थी, ठीक है, बादशाह की औलादें वहाँ पे जाती थी अदब सीखने और उर्दू सीखने। तो अब आप देखें, क्या कोई ऐसा मुशायरा है कि कोई वहाँ पे जाए और वो उर्दू ज़ुबान सीख के आए, या कोई तहजीब सीख कर आए, या कोई मतलब कोई इखलाकी पहलू भी तो नहीं ना रह गया कि आपकी शायरी क्या कवर कर रही है, आपके जज्बात, आपके हवस वगैरह कवर कर रही है चीज़ें।
2: बिल्कुल ठीक बात की आपने। यहीं पर वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शायरी के बारे में और मौजूदा दौर की शायरी को क्या मसाइल दरपेश हैं इसके बारे में। आपकी जो जर्नी थी टूवर्ड्स पोइट्री, आपको ऐसे कौन से शायर थे जो आपके आइडियल थे कि अच्छा इनको मैं पढ़ता हूँ? या एक चीज़ होती है ना कि लेट सपोज अगर मुझे होस्टिंग का शौक है तो कोई मेरे आइडियल हैं कि मैंने इनकी तरह होस्टिंग करनी है, या ये मुझे होस्टिंग में बहुत पसंद है, तो ऐसे शायरी में जिनको आप पढ़ते हो कभी या कभी आपके आइडियल रहे हों?
2: जनाब मोहसिन नकवी साहब थे, अहमद फराज साहब थे, अब्दुल हमीद अदम साहब थे, तो इनको, नासिर काज़मी साहब थे, इन लोगों को पढ़ के एक होते हैं ना कि अंदर आपके कुंदन बना, तो अंदर मेरे ख्याल में मतलब शायरी। और दूसरा ना हमारा जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो है भी ज़रा मजहबी हवाले से, हम लोग पढ़ते हैं मतलब सो सलाम मरसिया वगैरह, तो शुरू से बचपन में मिर्ज़ा दबीर के, मीर अनीस के कलाम सुने हुए थे, तो यहाँ से भी आप ये कह लें कि तरबियत हुई। दूसरा मेरे परदादा, वो भी मरसिया निगार थे, शायर थे, तो मतलब मेरे दादा बाजौक थे, अब माँ अब्बा बाजौक थे, सुरीले थे सब, तो शायर नहीं थे, शायरी मतलब हम लोगों, मेरा एक भाई छोटा जो दुनिया में नहीं रहा, वो और मैं, हम दोनों में शायरी आई या हमारे परदादा में आई थी। तो ये चार पांच लोग थे, अदम साहब थे, नासिर काज़मी साहब थे, मोहसिन नकवी थे, अहमद फराज थे, ये लोग।
1: अच्छा, आपने जिस इदारे से अपनी तालीम ली एक उसका भी एक बड़ा अदबी बैकग्राउंड है, तो क्या इदारे ने आप पे इन्फ्लुएंस किया शायरी में?
2: अच्छा, मेहनत तकरीबन अपने अपना अभी तक का मैं आधे से ज़्यादा मतलब सफ़र कर चुका था शायरी का, कि मैं 2015 से लिख रहा था तो मैं 5 साल हो गए थे मुझे लिखते हुए। तो होता है कि अच्छा, बहुत से जो ऐसे वहाँ जो शायर हैं वो उधर जाके शायर बने हैं, मतलब उनको वो क्या कहते हैं, उनके अंदर इंग्रेडिएंट आ गए शायरी के, तो मैं तो ऑलरेडी शायर था और पहले से वो नाम नूम था। हाँ, ये है कि वो आपके तजर्बे का हिस्सा ज़रूर बनती है वो चीज़ें, बहुत सी ऐसी क्या नाम है अच्छी अच्छी चीज़ें जो वहाँ पर मतलब हुई शायरी में, तकलीफ हुई।
1: फैज जैसे शायर वहाँ से,
2: बिल्कुल
1: निकले।
2: बिल्कुल, बहुत सूफी तबस्सुम साहब हैं, अपने अब्बास साबी साहब उधर के हैं
1: जी, अब्बास
2: जफर इकबाल उधर के हैं, तो शहजाद अहमद साहब उधर के हैं, इस हवाले से तो जीसी। और जीसी में मैं आपको एक और बात बताऊं, वहाँ जो मुशायरे होते हैं ना, आप

0: तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है जो हमारे 9th, 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में हमें जो गज़लें और नज़में पढ़ाई जाती हैं और फिर उनकी जो तशरीहें उर्दू के टीचर्स हमें करवाते हैं, आपको नहीं लगता कि वो जो एक 16 साल से 18 साल का बच्चा वो गज़लें पढ़ रहा है और फिर जैसे उसके टीचर उसको तशरीह करवा रहे हैं या करवा रही हैं, तो उस पे उस बच्चे पे वो शायरी का इन्फ्लुएंस क्या होगा?
1: असल में हमारे जो आपको पता है कि जो कुछ भी नहीं बनता वो उस्ताद बन जाता है, यहाँ टीचर बन जाता है, तो ये चीज़ें और उस्ताद अपने इंटेलेक्ट लेवल के मुताबिक उसकी शेर की तशरीह कर पाता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ये देखा है कि लोग रटी रटाई चीज़ों की तरफ जाते हैं कि जैसे मावने अदब वगैरह, ये जो ग्राम क्या कहते हैं इसको, गाइड्स बुक जो होती है उनकी तरफ जाते हैं, उनका अपना मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, एक तरोताज़ा दिमाग, एक ज़हीन दिमाग जो सलाहियत रखता हो सोचने समझने की, वो ही किसी शेर की तशरीह कर सकता है ना। और शेर के अंदर कितने पहलू हैं, किस किस हवाले से बात हो रही है, ये तो वही बंदे देख सकते हैं जो क्रिटिकल थिंकर हैं, जो जहन में इतनी वसत रखते हैं कि चीज़ों को हर आईने में देख सकें, कि वो उसमें देखा जाए कि उसमें तलमी है, तलमी आपको समझते हैं कि किसी वाक्य की तरफ इशारा करना शेर के अंदर, या उसके अंदर जदीद पहलू क्या है, वो जदीद दौर से हम आहंग है, जिस तरह वो उनका शेर है कि यूसुफ हसन का शेर है, यूसुफ ये कौन हमको खला में उछाल कर अंदाज़ा कर रहा है ज़मीं के खिंचाव का, अब ये जदीद तरीन शेर है। और जैसे गालिब का शेर था, गालिब कितना 2 सदियाँ बीत गई गालिब को, तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। अब आपने वो नंबर्स वाले लॉग देखे होंगे, तो गालिब उस वक्त ये शेर कह रहे हैं। तो शायर अपने दौर से आगे का होता है। हमारे एक सर हैं, वो ये बात करते थे, वो कहते थे कि शायरी के अंदर जो उड़ने का तसव्वुर है ना, वो पहले आया, साइंस के बाद वो चीज़ बाद में आई। तो हम तो वही ऐसे लिटरेचर को ही मतलब प्रेफर करेंगे ना, हम तो ये सतहीपन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे।
0: नहीं, आप खुद भी शायरी करते हैं, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में असल में शायरी को क्या मसाइल दरपेश हैं?
1: शायरी, अच्छा, ये ना वो
0: या शोरा को कह लें कि हाँ। क्या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर है जो अब उर्दू से जरा पीछे हो रहा है, तो एक क्लास भी है, तो आपको क्या लगता है कि अब क्यों इतनी पीछे हम क्यों जा रहे हैं उर्दू से और एक दूसरी जुबान
1: की तो तरफ? अच्छा, हमारा मसला ये है कि जितने भी जो लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं ना, उनके वहाँ पर रोजगार के मुलाजमत के मौके बहुत कम हैं और मोस्टली जो हैं वो टीचिंग के ही हैं, आप कहीं भी देखेंगे। दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने शौक को जरिया माश भी बनाओ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, हो गई। और ये भी वक्त डिसाइड करता है, आपकी ऑडियंस मतलब डिसाइड करती है, मतलब ऑडियंस मतलब आपका कारी डिसाइड करता है कि आप कितने साल तक चलोगे, या 20 साल तक आपका कोई नाम लेवा भी होगा कि नहीं। हमारे सर वाजिद कहते हैं कि हम लोग अपने अहद के बड़े शायर के लिए शेर कह रहे हैं, क्योंकि कल को जब तारीख मुरतब की जाएगी ना शायरी की, तो उसके ऊपर जो एक हमारे अहद के बड़े शायर का नाम होगा, उसके अंदर जो मासरीन जो होंगे, हम असर जो होंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आधा मिसरा हमारा भी रह जाएगा कि यार ये भी मिसरा होगा। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अब जिस तरह मैंने कोई शेर कहा है या किसी ने भी कुछ कहा है, तो वही ख्याल उठा के कोई मशहूर बड़ा आदमी इस्तेमाल कर ले, सही है। अब कल को जब तारीख मुरतब होगी तो वो कहेंगे कि ये शेर तो फलां शायर का था, मगर इसी मजमून में ये काज़मी साहब का भी शेर है। तो ये भी होता है, मतलब इस्तेसाल भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, मगर ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा। देखें,
0: बिल्कुल यही पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम नखले अदब में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे हैं शायरी पे, मौजूदा दौर में शायरी के मसाइल और क्यों आजकल की शायरी इतनी सतही हो गई है। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आजकल के शोरा को या शायरी को किस चीज़ के मसाइल दरपेश हैं, तो आप बता रहे थे तजमल, क्या मसाइल आपको लगते हैं कि हैं और वो कैसे बेहतर हो सकते हैं?
2: अच्छा, यहाँ शायरों को जो मसाइल हैं, एक तो ज़िंदगी के हवाले से, आपको पता है कि बहुत से लोग, मतलब हमारे सर कहा करते थे कि बेटा पहले कुछ बन जाओ तो यही लोग आपकी सदारत भी रखवाएंगे, आपको मेहमान खसूसी भी बुलाएंगे। अब जो शायरी तो यार एक फ़न है, बिल्कुल आप अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अपना करियर आप परस्यू करो, उस तरफ हमारा मतलब बहुत सा ध्यान कम है। दूसरा, वो लोग चाहते हैं कि यार मैं शेर कहता हूँ तो मुझे यहाँ, जिस तरह मुझे एडमिशन मिला है ना डिबेट बेस के ऊपर, मुझे ऐसे नौकरियाँ भी मिलें, मुझे इस तरह मेरा कोई वजीफा लग जाए, तो इस तरह नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं अच्छा गाना गाता हूँ मुझे इस बेस के ऊपर CEO साहब बुला लेंगे, यार मेरे सीधे हाथ पे बैठा करो इधर, तो ऐसे नहीं होता। एक तो ये ज़िंदगी के मामलात हो गए, बाकी शायरी के जो मामलात हैं उनके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं, जो इस्लाह की ज़रूरत आती है, वो इसलिए मामलात हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना एक तो असाज़ा की तरफ मतलब बिल्कुल भी रुझान ही नहीं है। वो कहते हैं हम क्यों किसी से इस्लाह लें, कोई हमारी गलती क्यों निकाले। तो ये बहुत ज़्यादा है कि यार मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, वो पत्थर पर लकीर है, और अगर कोई उसके ऊपर मतलब तनकीद करता है तो हम उसको बुरी नज़र से देखते हैं, वो तनकीद बराए इस्लाह नहीं लेते, मतलब हम बेउस्तादा होना आपको पता है गाली समझा जाता है। तो लोग उस्ताद के पास जब नहीं जाएंगे, एक तरबियत गाह होती है उस्ताद के पास बैठना, तो ये शायरी में फिर मसाइल तो आएंगे। आपने क्या कहना है शेर में, क्या नहीं कहना, ये आपको मुताले से पता लगता है। मतलब आपका इतना मुताला तो हो ना कि आप कहोगे यार मुझे ज़रूरत नहीं है, तो किसी ना किसी बड़े की आपको ज़रूरत रहती है। यार बड़ा ना भी हो, आप दोस्तों में डिस्कस करते हो कि यार ये नई चीज़ लिखी है, ये मैंने गज़ल कही है, देखना ये कोई मसला तो नहीं है, कोई ख्याल कोई मौजू तो नहीं किसी शायर से टकरा रहा, अगर टकरा रहा है तो मैं उसे हज़फ कर देता हूँ, उसे काट देता हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शायरी का भी मैंने बता दिया आपको कि एक अना बहुत है, और फिर सतहीपन इसीलिए है क्योंकि फ़िल्टर नहीं है। आपका हल्का अहबाब अगर शायरी करता है, वो अच्छी शायरी करता है, तो आप जब उनको चीज़ें सुनाते हो तो वो फ़िल्टर होती चली जाती हैं, वो एक प्योर फॉर्म में आ जाती हैं। आपने उस्ताद को दिखा दिया, आपने अपने दोस्तों को सुना दी चीज़, और मेरा तो अल्लाह ने खैर से मुझे भाई भी ऐसा दिया था जो माशाल्लाह इतना अच्छा शायर था, तो वो भी होता था, वो सुनता था, वो कहता था ये रख दे, ये निकाल दे, ये इस तरह कर ले। तो ये चीज़ें होती हैं कि सर कहते थे हमारी तख्लीक वक्त लेती है, तो तख्लीक तो वक्त लेती है, उसके बाद उसको प्योरीफाई करना आपका काम है।
1: और आपके साथ जो अब आने वाले शोरा हैं, उनमें आपको कोई ऐसा शायर लगता हो कि ये बहुत अच्छी शायरी कर रहा है रीसेंट डेज में?
2: हाँ, मेरे दोस्त हैं, फयाज बोस्तान है, एहसन जैदी एक मेरा दोस्त है, और राद एहतिशाम है, अली काइम नकवी है, बहुत से ऐसे मतलब लड़के हैं जो नौजवान हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। एक कराची के भी है, शाज़िब खान है, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। मतलब इस हवाले, अगर गज़ल के हवाले से देखा जाए तो बहुत तवाना आवाज़ें मौजूद हैं।
1: और मैं चाहूँगी कि आप प्रोग्राम का इख्तिताम अपने या तो किसी पसंदीदा गज़ल या नज़म से कर दें, या किसी की भी जो आपको बहुत नज़म या गज़ल पसंद हो।
2: मैं नज़म सुना देता हूँ आपको। इत्र दानों के बस की बात नहीं, रेगे शफाफ से निकालता है तू वो खुशबू के अबरे बारा, जिसे खाक की नाफ से निकालता है तूने चूमा हो जिसकी आंखों को, वो तहे आप देख सकता है तू जिसे रात दिन मुयस्सर हो, कोई भी ख्वाब देख सकता है। याद पामाल कर रही है मुझे और कोई जिस्म पर निशान नहीं, ये बहुत दुख की बात है दोस्त, जिंदगी तुस्सी मेहरबान नहीं, और आशनाई की तेक से कोई दर अजियत का बंद करता है, मैं भी उसका ख्याल रखता हूँ, वो भी मुझको पसंद करता है, तुझसे मिलकर मुझे यकीन आया हम मिजाजी का सैर होता है। یوں کھلی ہے تیری نظر مجھ پر جیسے رنگوں کا شہر ہوتا ہے، اور مبتلائے غم دو عالم تھا جیسے تیسے رہا گزارا کیا، اور ایک دن تیری ہنسی نے مجھے زندگی کی طرف اشارہ کیا، اور مسکرانا بھی عیب ہے گویا، بوجھ ہے اگر خوشی تیرے بن ہے، دل مہکتا ہے جس کی خوشبو سے آج اس پھول کا جنم دن ہے۔
1: بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی شاعری کے متعلق، کیا مسائل درپیش ہیں شاعری کو، اور کیسے یہ شاعری بہتر ہو سکتی ہے، اور کیسے ان سب چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔ خدا حافظ۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: ठहरे।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Dunya.
2: Bhook chehre pe liye chaand se pyare bachche, pechte phirte hain galiyon mein ghubare bachche. Ho gaya charkh sitamgar ka kaleja thanda, mar gaye pyaas se darya ke kinare bachche. बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं। इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं। इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है। इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं। इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है। ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं। बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं, लेकिन बाज औकात हालात, रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है।
3: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं। हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता, इसलिए किराया दे नहीं सकते। इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं। हमारी मम्मी कहती है शहर पे चले जाओ, इधर काम कर लो, अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम घर की आमदनी चला लेते हैं। जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे, जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं। जो भी होते तो हम फिर भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह का नाम है, छोड़ दो हमें। कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये, कोई 20 देते, कोई देता नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते, कोई देते नहीं। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी कल का सरकट चल जाता है।
2: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं। जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है। दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं। जिंदगी, वक्त, हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता।
4: मेरे बब्बू फोत हो गया, मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ। इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं, जिसमें फिर मेरे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है। वो मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ। मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं। इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है।
2: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं। हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो जहनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते। लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है।
5: मैं पांचवी क्लास में पढ़ता था, तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई। अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे। मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है, तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया। अब छुट्टियाँ हुई हैं, मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ। सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था, अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ। आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया। उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ।
2: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे, इनसे इनकी इस्तेदात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले, मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार, इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
6: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उससे उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
2: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। افراط زر بھی بچوں کو مزدوری کرنے تک لانے کی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں بچوں کے یا گھریلو اخراجات پورے نہیں ہوتے تو مجبوراً والدین کو بچوں کو کام کرنے پر بھیجنا پڑتا ہے۔ چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن ہر سال 12 جون کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بچوں کو کام کرنے سے روکنا ہے۔ قانون بنانے والے محلوں میں بیٹھ کر قانون وضع کرتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اصل مسئلہ چائلڈ لیبر کا نہیں بلکہ ملک میں معاشی صورتحال کا ہے، جس میں کرپشن، رشوت اور دن بدن بڑھتے ہوئے ٹیکسز ایک اہم مسئلہ ہے۔
7: وہاں 1,30,00,000 افراد خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر افلاس کی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، تو اس میں پھر ہمارا شمار قطار کہاں؟ اگر ہمارا ملک تو ویسے ہی قرضوں پہ چلنے والا۔
2: کون سی ممتا ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو مزدوری کرنے والے اوزار تھمائے، مگر پیٹ کی بھوک اور معاشرے کا تلخ رویہ انسان کو اس نہج پر لا کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اس بات کے کیسے حامی ہو سکتے ہیں کہ پھول سے معصوم بچوں کے ہاتھ کام کرتے ہوئے آبلوں سے بھر جائیں؟ مگر کسی غریب کا گندگی کے ڈھیر سے نوالہ تلاش کرنا بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
8: اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल आज रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। जिंदगी के मामलात किसी भी किस्म के हों, जैसे कि राइड बुकिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन मेडिसन, चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, शॉपिंग, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, इंटरनेट की शमूलियत हर शोबे में लाजमी है। मगर कुछ सालों से IT की फील्ड में एक नई टर्म का जिक्र बहुत बढ़ चुका है। न सिर्फ जिक्र बढ़ चुका है बल्कि इंडस्ट्री और रिसर्च में इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, और वो टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज हम रोशनी डालेंगे इस टर्म के टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर, जो कि UCP FOIT SE डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं और वायरलेस नेटवर्क्स एंड रेडियो सिस्टम्स की फील्ड में रिसर्च का तजर्बा रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि असल में ये है क्या और ये किस तरह दुनिया को बदल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर।
4: जी वालेकुम सलाम।
3: बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
4: जी आपका शुक्रिया, आपने मदद किया।
3: चलिए सर, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ आते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि IoT, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, असल में ये है क्या?
4: जी बुनियादी तौर पे इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ज़माने में हम जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कंडक्ट करते थे, तो उसके हवाले से हमारे पास कुछ मोबाइल डिवाइसेज होती हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो जब भी आपने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस होना जरूरी है। चाहे इट कुड बी अ मोबाइल, वो हो सकता है मोबाइल हो, वो आपके पास लैपटॉप हो, वो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। अभी कुछ अरसे से आप एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि होम ऑटोमेशन के हवाले से, लाइक मैं अगर घर पे नहीं हूं तो मैं अपने CCTV कैमरा को देखना चाहता हूं। तो जो कैमरा एक ऐसी एंटिटी है जो कि इंटरनेट डिवाइस, वो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है सॉरी, लेकिन वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो इंटरनेट पे कनेक्ट है।
3: जी।
4: इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं घर में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी होम सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहता हूँ, लाइक मेरी डोर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, मेरा जो एयर कंडीशन का सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो मैं अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं और अपने मोबाइल के जरिए अपना किसी भी अपनी होम अप्लायंस को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, या किसी भी एंटिटी ऑफ माय होम को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा हूं या मैनेज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए उस डिवाइस, उस होम एंटिटी का या अप्लायंस का इंटरनेट पर कनेक्ट होना जरूरी है। तो जब ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो एक ऐसी एंटिटीज बन जाती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो कंप्यूटिंग डिवाइस ना होने के बावजूद कनेक्टेड है। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो उनको हम थिंग्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो रेफर करते हैं, और ये एक मिला के एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, विच इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
3: सर, क्या ये कहना सही है कि IoT नेटवर्क में हर डिवाइस एक कंप्यूटर का रोल अदा कर रही होती है?
4: बेसिकली हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अलावा इनको कंप्यूटर का रोल अदा करने वाली डिवाइस तो नहीं कह सकते
3: जी।
4: लेकिन जब वो मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई भी डिवाइस, लाइक मेरा सेपरेट यूनिट है, इन्वर्टर है, मेरी फ्रिज है, मेरा माइक्रोवेव है, मेरी डोर है, या मेरी अलार्म क्लॉक है, या मेरा CCTV कैमरा है, ये कंप्यूटिंग डिवाइस का रोल अदा नहीं कर रही, मगर ये एक ऐसी एंटिटी के तौर पर बिहेव कर रही है जो इंटरनेट पर कनेक्ट हो गई है
3: जी।
4: और जब वो इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो हम उसको किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं।
3: Exactly.
4: और जब वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाती हैं, तो एक लार्ज नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और थिंग्स से मुराद अदर देन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये डिवाइसेस हैं जो हमारी होम अप्लायंसेस भी हैं, या होम यूजेज के अंदर, या हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करती हैं, वो यूज हो रही हैं।
3: सर, अभी आपने जिक्र किया कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना डिवाइस का जरूरी है, तो सर क्या हम किसी ऐसी डिवाइस को भी IoT नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं जो इंटरनेट इनेबल्ड ना हो?
4: نہیں اس میں شرط یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی انیبلڈ, دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان شارٹ ود دا انٹرنیٹ. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو دیٹ مینس کہ وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو وہ تھنگس یا وہ انٹیٹیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی انٹرنیٹ آف تھنگس کا پارٹ نہیں ہے.
3: سر آپ نے کہا کہ سرویلنس کے لیے ہم یہ سارا نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں اور کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, تو سر اس کی اگر کوریج کی بات کریں تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟
4: کوریج ایریا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے, جیسے آپ موبائل پہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے اور میں چل رہا ہوں, میں نے رائڈ کروائی ہے, میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے,
3: جی,
4: تو اگین جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی اور انٹیٹی کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ انٹیٹی اگر انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی اپنی شو نہیں کرے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آف ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ کیمراز تو چل رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے لیکن ان دا اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان کو ویو نہیں کر پا رہا کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ آف ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمراز گھر کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. اور میں اپنے اگر ایک اور ایگزامپل میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر کا اے سی آن چھوڑا ہوں فار ایگزامپل, اور میں اس کو آف کرنا, ایسا اکثر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, اور میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں تھرو مائی موبائل ڈیوائس لیکن جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, تو جو میرا جو انورٹر ہے یا میرا اے سی ہے وہ پھر اس کو میں آپریٹ نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ انیبلڈ ہونا اور انٹرنیٹ پہ کنیکٹیوٹی ہونا دیٹ از ویری اسینشل.
3: سر آئی او ٹی کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں؟
4: ایک جو دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بیسٹ بتائی ہیں, نمبر ون از بیسیکلی کہ جو ہم سی سی ٹی وی کیمراز کو آپریٹ کر رہے ہیں,
3: جی,
4: اور ہوم آٹومیشن کے حوالے سے میں اپنی کوئی بھی اپلائنس ہے اس کو مینیج کرنا چاہ رہا ہوں, تو دنیا کیونکہ بہت تیزی سے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, ہوم آٹومیشن کی طرف, اور وہ ہوم آٹومیشن نہیں آفس آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے آفس کے جو روزمرہ امور ہیں ان کی آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آٹومیٹ تھرو انٹرنیٹ, تو دیر از بیسیکلی اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ ہے, وہ بیسک کانسیپٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوم آٹومیشن پہ جائیں گے تو ہمیشہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی لاگو ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا.
3: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर आबिद बशीर साहब से IoT के बारे में, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर IoT डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे जाने से पहले, तो सर इनको हम टेक्निकली डिफरेंट कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, इनकी टेक्निकल डिवीजन होती है, कैटेगराइज किया जाता है इनको दो बेसिक कैटेगरीज में। नंबर वन इज कॉल्ड जनरल डिवाइसेस एंड द अदर इज कॉल्ड सेंसिंग डिवाइसेस। वो इनकी नेचर ऑफ यूसेज और नेचर ऑफ ऑपरेशन के हवाले से डिवाइड किया जाता है।
1: सर आपने जैसे अभी बताया कि इनको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, वन इज जनरल डिवाइसेस एंड अदर वन इज सेंसिंग डिवाइसेस, तो सर इनका एक्चुअली IoT नेटवर्क में क्या रोल है और इनसे रिलेटेड कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अगर बताएं तो हमारे लिसनर्स के लिए आसानी होगी उसको समझने में?
2: जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जनरल डिवाइसेस से स्टार्ट करूंगा। जनरल डिवाइसेस में हमारे सामने अभी मैंने जैसे जिक्र किया आपके पास कि आपके पास CCTV कैमराज हैं, होम अप्लायंसेज में आपके पास एयर कंडीशनर्स हैं, तो वो इंटरनेट पे कनेक्ट होने चाहिए। अब ये डिवाइसेस क्यों कनेक्ट होनी चाहिए? क्योंकि आप इनको ऑपरेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल्स के साथ, तो अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ये कनेक्ट नहीं होंगे। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए इनको कोई वायरलेस या वायर्ड लिंक की जरूरत होती है। हमारे घरों में आमतौर पर राउटर लगा होता है जो हमें इंटरनेट के सिग्नल्स दे रहा होता है, और वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिवाइस अगर इंटरनेट इनेबल्ड है तो वो अटैच हो जाएगी। अब ये जनरल डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है कि ये जो अप्लायंसेज जिनकी मैंने जिक्र किए हैं ये जनरल डिवाइसेज हैं। जैसे मेरा एयर कंडीशन है ये इंटरनेट पर कनेक्ट है, ये जनरल डिवाइस है। इसके अलावा जो मेरा CCTV कैमरा है ये इंटरनेट पर कनेक्टेड है, वो जनरल डिवाइस है थ्रू एनी वायरलेस लिंक और वायर्ड लिंक। ठीक है, अब जब ये कनेक्ट हो गए हैं, अब इनको क्या मकसद क्या था कनेक्ट करवाने का, ताकि इनको ऑपरेटेबल किया जा सके ओवर द इंटरनेट थ्रू माय कंप्यूटिंग डिवाइस जो मेरे पास मोबाइल घर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, एट एनी पॉइंट लोकेशन या किसी भी जगह पे मैं बैठा हूँ अवेलेबल हूँ। लेकिन जो फेंसिंग डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो सेंसर और म्यूटेटर्स का काम करती हैं। बेसिकली उन्होंने क्या करना होता है, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनवायरनमेंट का पार्ट ही, लेकिन वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो ऑपरेट नहीं हो रही, वो सेंस कर रही हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सुबह उठते ही पर्दा पीछे करूँ तो मेरी अलार्म क्लॉक जो है वो चल पड़े। तो बेसिकली जो मेरी अलार्म क्लॉक है वो भी एक डिवाइस है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है, लेकिन वो मेरी सूरज की रोशनी को सेंस करेगी, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑफ या टास्क को सेंस करेगी, तो वो बेसिकली अपना काम करेगी। तो है वो भी एक IoT की डिवाइस, लेकिन वो सेंसिंग डिवाइस की कैटेगरी में आएगी।
1: सर आपने अभी बताया कि वायर नेटवर्क की बात की और वायरलेस नेटवर्क की बात की, इन दोनों में फर्क क्या होता है?
2: ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का और इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी, क्योंकि आजकल हर चीज इंटरनेट पे चल रही है, इंटरनेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग अपॉन ओवर द इंटरनेट। तो उसमें आपने जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको एक इंटरफेस चाहिए होता है, जिसे हम लिंक भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में चैनल भी कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं, जो दो या मोर देन टू डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो लिंक बेसिकली वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर की डिवाइस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में बैठ के, या यूनिवर्सिटी के किसी डिवाइस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं घर में बैठ के, तो आपका डिस्टेंस जो कवरेज एरिया है वो काफी लार्ज है। तो इस केस में जो आपका आइडियल लिंक बनता है वो वायरलेस बनता है, जो आपको मोबाइल डाटा के जरिए सिग्नल मिल रहे हैं वायरलेस लिंक की एग्जांपल्स है। और अगर आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, आपने अगर एक ब्लू केबल होती है जिसे हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, उसको अगर आपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज बेसिकली अ लिंक जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो वायर्ड लिंक है।
1: अच्छा सर, अभी तक तो हम सिर्फ अपने होम अप्लायंसेज और घर के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सर बिजनेस के लिए IoT किस तरह फायदेमंद साबित हो सकता है?
2: बिजनेस के ऊपर बात करने से पहले मैं पहले आऊंगा एट द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें तो रिसर्च में इसका क्या काम हो रहा है? रिसर्च में अगर हम देखेंगे IoT के ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया जा रहा है। ऐसी रिसर्च भी हो रही है जिसमें IoT विद ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग को एम्बेड किया जा रहा है। तो ऐसी अप्लायंसेज यूज की जा रही हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी इन्वॉल्व करें और उसके अलावा वो मशीन लर्निंग ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करें। बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच को अगर हम देखें तो वहां पे बेसिकली अगेन होम ऑटोमेशन या ऑफिस ऑटोमेशन या आपके जो टास्क हैं रोजमर्रा के उनकी ऑटोमेशन ओवर द इंटरनेट, वो इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा डेफिनेटली आगे जाके, जिस पे हम बात करना पसंद करेंगे, दैट इज बेसिकली कि आप जब इतना कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं
1: जी,
2: तो उसको ह्यूमन कंट्रोल में रखना और जेन्युइन कंट्रोल में रखना, फेक आइडेंटिटी को जो है वो मिसयूज होने से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं
1: जी,
2: वो सिक्योरिटी प्राइवेसी मेजर्स में आ जाता
1: जी,
2: है
1: जी। सर, अगर आपने अभी खुद ही इसका जिक्र छेड़ दिया तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अटैक्स का क्या क्या इशू हो सकता है आईओटी बेस्ड नेटवर्क्स पे।
2: लेकिन जो चीज इंटरनेट पे चली गई है उसको प्राइवेसी कंसर्न का इशू फेस करना पड़ सकता है
1: जी,
2: बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द यूजर। आप एक मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप इज नॉट एन एग्जांपल, आइडियल एग्जांपल ऑफ आईओटी, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और यूजर नेम पासवर्ड के बाद फिर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ओटीपी दिया जाता है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना इन शॉर्ट होता है। तो इसी तरह जब आप अपना होम अप्लायंस को इंटरनेट पर लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अलावा कोई और ऑपरेट ना कर सके, तो अगर आपके अलावा कोई और ऑपरेट करना भी चाह रहा है तो उसको क्रेडेंशियल्स देने चाहिए। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, जहां पे हम, मैं जेनेरिक लेवल पे बात करूंगा क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी टेक्निकल नहीं है
1: जी,
2: जो उसकी डीप डाउन द लर्निंग में जाए, तो उसमें आपको क्रेडेंशियल्स में यूजर नेम पासवर्ड की आप अगर ऑपरेट भी करना चाह रहे हैं किसी घर की कोई अप्लायंस को या किसी भी और चीज को जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनवायरमेंट का पार्ट है, तो उसमें आप उसको वेरीफाई करें तो वो यूजर नेम पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स हैं, देन डेफिनेटली अगर यूजर नेम पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अदर देन दैट फिर आप क्या करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जिसमें हम वन टाइम पासवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स कंडक्ट करते हैं। ओवरऑल मेन मकसद क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस को मेंटेन करना
1: जी।
2: कि आपके अलावा कोई और जो है वो अगर किसी भी एनवायरमेंट है आईओटी का उसमें एड अप होके आपकी फेक आइडेंटिटी को यूज ना करे या आपकी क्रेडेंशियल्स को मिस यूज ना करे। तो सिक्योरिटी अटैक
1: आईओटी में मिस यूज किस तरह किया जा सकता है चीजों को,
2: ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी के जरिए। अगर आपकी अप्लायंस, मोबाइल आपका चोरी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल्स है
1: जी।
2: तो अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया और आप उसके बाद आपका पैटर्न लॉक भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब आपकी जो मोबाइल ऐप है जो आपको एक्सेस दे रही है आपके सीसीटीवी कैमरास की
1: जी,
2: तो वो मोबाइल ऐप अगर यूजर नेम पासवर्ड इनेबल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर आपके घर की अप्लायंस को व्यू भी कर सकता है
1: जी,
2: आपके घर के अप्लायंस के जरिए सॉरी लाइक सीसीटीवी कैमरा उसको व्यू भी कर सकता है और उसको यूज भी कर सकता है। तो ये वन एग्जांपल है बहुत बेसिक। तो अगेन सिक्योरिटी मेजर्स जेनेरिक लेवल पे अगेन वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी के ऊपर ही हम काम करते हैं थ्रू क्रेडेंशियल्स, लेकिन फिर आगे इसमें मजीद कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक पैसिव अटैकर्स और एक्टिव अटैकर्स के। वो बेसिकली क्या होता है कि लाइक कुछ अटैकर्स होते हैं जो आपके डाटा को मैनिपुलेट करते हैं
1: जी।
2: कुछ ऐसे भी अटैकर्स होते हैं जो आपके डाटा को मैनिपुलेट करने के अलावा वो बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर कोई ऐसा अटैकर है तो उनको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, अगेन वी हैव टू मेक सम सिक्योरिटी मेजर्स, और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए आपको लाइक क्रेडेंशियल्स और जो आपके लाइक यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, ओटीपीज हैं, इनको आप यूज करते हैं और प्रॉपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिटेल्स में आ जाती हैं चीजें जो हम यहाँ पे फिलहाल बात नहीं कर सकते, वो क्योंकि डेफिनेटली एक एडवांस कॉन्सेप्ट है।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं. इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मजीद जानते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर. जी सर, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो IoT में मजीद क्या काम हो सकता है?
2: रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो थ्रेट है हमेशा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही रहता है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट ऑफ द IoT बेसिकली. तो यहाँ पे अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से कई एल्गोरिथम्स हैं, कई अप्रोचेज हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं इन द मार्केट. और जो मैंने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल आपकी IoT की सर्विस को यूज करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिस यूज तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए वी हैव टू डिनाई द इररिलेवेंट यूज ऑफ सर्विस. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस. तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी बच्चे काम कर सकते हैं. और डिनाइल ऑफ सर्विस दो किस्म का होता है. एक बंदा जो जनमन है और वो अपनी सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है IoT के एनवायरनमेंट में, तो उसको डिनाय कर दिया जाए. इसका मतलब किसी ने आपके नेटवर्क को हैक कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से. और दूसरा ये है कि आप उस बंदे को डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, डिनाई करें सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस के जरिए जो ऑथराइज्ड नहीं है. तो इसके लिए ऑलरेडी कई एल्गोरिथम्स हैं. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो ऑलरेडी अगर एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स या मैकेनिज्म्स, तो हम और मजीद क्या रिसर्च करें. वी हैव टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि
1: सर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नेटवर्क्स को, इस बारे में भी काम हो सकता है.
2: नेटवर्क जैसे जैसे आपका नेटवर्क का कवरेज एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ेंगे, यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे. तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जो हैं या सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसमें रिसर्च के जरिए ही लाई जा सकती है. तो रिसर्चर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को या प्राइवेसी मैकेनिज्म्स को जो है वो इंश्योर करने के लिए इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. ताकि क्योंकि दुनिया कल को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है और हर कोई होम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वो क्या चाहता है कि जी मैं इंटरनेट के जरिए हर काम अपना परफॉर्म कर सकूँ, तो इन द एंड उसके लिए क्या है कि ठीक है आप फैसिलिटी तो दे रहे हैं मगर आपको सिक्योर और प्राइवेट या सेफ एनवायरनमेंट भी देना है. तो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है.
1: जी सर, अगर IoT के फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो इस पे मजीद काम हो सकता है, ये क्या स्कोप आपको लगता है इसका?
2: इस पे काम पहले भी हो रहा था, लेकिन इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम रिसर्च पेपर्स को चेक करें तो उसमें बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी बढ़ा है और इस्तेमाल भी बढ़ा है.
1: जी.
2: लेकिन वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज अगेन इंटरनेट की दुनिया बहुत जो है वो रैपिड हो गई है, स्पीड अप हो गई है, और अब हम 4G से 5G में जा रहे हैं. 6G, 7G पे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च कंडक्ट कर रही है. तो अगेन जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर अगेन इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है और ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च जो है या फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट भी है और बहुत ब्राइट भी है. तो नेक्स्ट मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले कम अज कम 5 to 10 years जो है वो IoT में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स होने के चांसेस हैं. और खाली IoT को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है. जब हम IoT का इस्तेमाल मर्ज करते हैं विद अदर टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इसके अलावा आपकी जो बाकी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर हम ब्लेंड कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर एक नया हाइब्रिड मॉडल बन जाता है. और वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज भी नए हैं. तो फिर उस केस में जो है वो फिर डोमेन या स्कोप और बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर नई एडवांसमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें IoT के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनका यूजेज भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो एक नया एनवायरनमेंट बनने के बहुत चांसेस हैं और नई एडवांसमेंट्स आपके सामने आने के चांसेस हैं, और फिर नई एप्लीकेशंस बिजनेस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी या बनाने का सोचेंगी या सोच रही होंगी डेफिनेटली, जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल आपके सामने ला के रखते हैं।
1: हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: जी मेरे लिए ऑनर की बात थी।
1: सर ये बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी, उम्मीद है लिसनर्स को भी IoT के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Assalamu alaikum. आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 ये सफ़े की दुनिया और मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सुहैर सगीर अपने सभी सुनने वालों को अपने सभी जाने वालों को और अपने प्यारे प्यारे सामीन को तहे दिल से करती हूँ खुश आमदेद जी आयानो भले कर सु और बखैर आगवे जी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हम आपके साथ आ चुके हैं प्रोग्राम तैयारे गर्ल्स को लेकर जिसमें हम सुनते हैं गजलें और मौसीकी की कुछ ऐसी बातों से और मौसीकी की कुछ ऐसी जहतों से हम आपको वो सब बताते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी उन यादों का हिस्सा होती हैं जिन्हें बार बार याद दिहाने की ज़रूरत होती है। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी मौसीकी लाई हूँ जो यादगार है जो लाजवाल है लेकिन हमारी कुछ भूली भटकी बातों का हिस्सा है यादों का हिस्सा है। तो हम वो सारी मौसीकी सुनेंगे। आज हमने आपके लिए कुछ फिल्मी मौसीकी में से जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं वो भी मैं आपके लिए लाई हूँ और जनाब जी बिल्कुल इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि हम दूसरों में तो बहुत ऐप देखते हैं लेकिन क्या हमने कभी अपने आप में ऐप तलाश करने की कोशिश की है इसके बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है जिंदगी में सुकून कैसे लेके आया जा सकता है ये सब बातें होंगी और बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले ट्रैक की तरफ। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक।

0: महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

एक बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। क्या ही खूबसूरत अल्फाज थे और उतनी ही खुशगुन आवाज़ थी। बिल्कुल ये खूबसूरत सी आवाज़ थी नसीम बेगम की, जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारी लेजेंड सिंगर थी और उन्होंने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हमें दिए हैं कि हम आज भी सुनते हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने इन आर्टिस्ट को याद रखना चाहिए, उनके बारे में बातें जो है वो हमें करनी चाहिए। ओके, तो जनाब आज जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बताया कि आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम बात बहुत कम करते हैं, अपने ऐबों के बारे में कि हमारे कौन से ऐब हैं जो हमारे अंदर होते हैं लेकिन हम नहीं उन्हें बयां कर पाते, हम नहीं निकाल पाते। शायद हम में उतना हौसला नहीं होता या हम दुनिया को नहीं बताना चाहते। वो कहते हैं ना, उतनी मेहनत जो होती है हमें तब नहीं करनी पड़ती जब हम सही होते हैं। मतलब जब हम सही होते हैं तो हम बस कह देते हैं कि हाँ मैं सही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता है असल मेहनत हम कब करते हैं? असल मेहनत हम तब करते हैं जब हमें ये साबित करना हो कि जनाब हम गलत हैं। ये पता है कैसे होता? अगर हम गलत हैं या नहीं गलत हैं, चलें ये जो एक दूसरी बहस होगी ये भी करेंगे, लेकिन अगर हम गलत हैं हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमें गलत आके प्रूव करे। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कोई इंसान मुझे आके कहते अरे आप तो गलत हैं। तो फिर क्या है, मैंने तो भाई हर किस्म की कोशिश शुरू कर दी और मैंने कह दिया कि इस इंसान ने मुझे गलत कहा है तो क्यों कहा है, तो गलत हो ही नहीं सकती। बस उसकी सही बात को गलत प्रूफ करने के लिए मैंने अपने तरफ से हर कोशिश कर दी कि वो गलत साबित हो जाए। और ये मेरे ख्याल में एक ऐसी बात है जो हम सभी में है। कभी कभार कुछ चीज़ें कुछ गलतियां हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं मानते। जी जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ आप सब बहुत सारों में से, मतलब आप सब में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि हाँ बात तो सही कर रही है लेकिन बातें ही तो करती है ये। ये हमारे साथ जो बातें करती है इस पर अमल तो ये करती नहीं होगी, है ना? ये भी हमारी एक गलत सोच है। हाँ हो सकता है कि ये गलती मेरे अंदर हो भी सकता लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो जनाब ये होता है हमारे ऐबों का मामला। अपने अंदर ऐब है हम तलाश नहीं करते, तलाश कर भी लेंगे तो कोई दूसरा अगर आके बता भी देगा ना तब भी हमने उसको गलत कहना है कि नहीं भाई, क्या जाएगा हमारा अगर हम किसी की बात सुन लेंगे। इश्फाक अहमद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी में कोई ऐब देख लो या कभी तुम किसी के इंसान में कुछ ऐसी चीज़ देख लो जो तुम्हें पसंद ना आए और तुम्हें लगे कि वो एक बुराई है उसमें, तो उस बुराई को उस इंसान को बताने से पहले अपने अंदर तलाश करो। अगर तो वो ऐब और वो बुराई तुम्हारे अंदर है तो फिर उस बुराई और ऐब को पहले अपने अंदर से ख़त्म करो, फिर उस इंसान को बताओ। क्योंकि हम तभी कुछ बात जो है वो दूसरों को कह सकते हैं, कोई भी बात दूसरों को कह सकते हैं जब वो खामी वो गलती और वो ऐब हमारे अंदर ना हो। एक बहुत गहरी बात है और मैं जानती हूँ कि हम गहरी बातों को भी कभी कभार ना ऐसे ही ले जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा होता है हम कहते हैं कि हाँ ज़िंदगी में एक फ्लो चल रहा है, मैं बस उस फ्लो के साथ चली जा रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन ज़िंदगी में बहुत बार उसके फ्लो को इधर उधर मोड़ने की जो कुव्वत है ना वो हम में होती है। उसको कैसे इधर ले जाना है, उसको कैसे उधर ले जाना है, किस मोड़ पे हमें यू टर्न लेना है, किस मोड़ पे हमें आगे जाते जाना है, ये सब हमारी मर्जी होती है, हमारे बस में होता है। क्योंकि ज़िंदगी का जो कंट्रोल है ना, जो रिमोट है ना, वो यहाँ होता है आपके दिमाग में, आपका दिल भी होता है। लेकिन दिमाग और दिल में जिसे कहते हैं ना कभी कभार वो कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाती। कोऑर्डिनेशन कैसे आएगी ज़रा आप सोचिए और फिर मुझे बताइए। अभी हम ऐसे करते हैं कि आपको एक खूबसूरत सी गज़ल सुनाते हैं, तो आइए और सुनते हैं।

ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अरे वाह, ये खूबसूरत सी आवाज़ सुन रहे थे आप उस्ताद अमानत अली ख़ान की। और उस्ताद अमानत अली ख़ान पटियाला घराने के रोशन चराग थे, जिनका मैं हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ आज तक जिंदा है, उनका गाया हुआ हर सॉन्ग आज तक जिंदा है। उनके जितने भी उनके हम सॉन्ग सुनते हैं वो इतने कमाल के होते हैं कि बस दिल से खुद ब खुद निकलता है कि लाजवाब थे वो और लाजवाब हैं वो। तो जनाब, एक बड़े फ़नकार की यही पहचान होती है कि वो जो अपनी छाप है ना, वो ऐसे छोड़ जाते हैं कि कोई दूसरा उसको मस्क नहीं कर सकता, उसे मिटा नहीं सकता। ऐसा ही कुछ अहवाल जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ होता, जैसे कि आज हमारा मौजू भी कुछ ऐसा है कि ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है और अपने ऐपों को कैसे निकाल सकते हैं। तो ज़िंदगी आसान, बहुत ही आसान हो जाती है जब हम इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बनाएं क्यों? हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की एक रूटीन है और हम उसी रूटीन के मुताबिक चलना चाहते हैं, हम खुद को बदलना नहीं चाहते। और पता है हम खुद को बदलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें इस बात का डर नहीं होता कि हम खुद को बदलेंगे तो हमें अच्छाई आ जाएगी या बुराई आ जाएगी। नहीं, हमें ये खौफ होता है कि अगर मैं बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि अरे डर गया, बस इतना ही था। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, अगर आप कुछ करोगे तब भी, कुछ नहीं करोगे तब भी, तो क्या ही सही है कि कुछ करके कहलवा लिया जाए। ये तो ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा जनाब, एक और बात, जिंदगी तब आसान होती है जब एहसास होते हैं। एहसास का रिश्ता जिंदगी के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ा होता है। एहसास आप यूं कह लीजिए कि वो खूबसूरत चीज है, एक ऐसा खूबसूरत राज है जो हमें इंसानियत की तरफ लेके जाता है, जो हमें जिंदगी की तरफ लेके जाता है, जो हमें मोहब्बत, नफरत, हस्त, हर चीज की तरफ लेके जाता है। अब ये एहसास जो है ना, यही जिंदगी बनाते हैं। जरा सोचिए, आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एकदम से आपने देखा कि कोई इंसान सड़क किनारे पड़ा है और उसके सर में से खून आ रहा है, यानी उसका सर फटा हुआ है। आप क्या करेंगे? पास से गुजर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप रुकेंगे, आप उसको उठाएंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। आप नहीं जानते वो इंसान कौन है, लेकिन आपका उससे रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है। और ये एहसास का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है। कितना ही अच्छा हो कि हम लड़ना झगड़ना छोड़ दें। क्यों? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे ये क्या बातें कर रही है, कभी कभार तो लड़ना हमारी मजबूरी होता है क्योंकि हमें खुद को सही साबित करना होता है। देखा, बात आ गई ना ऐबों की। देखिए, जिंदगी, एहसास, ये दो चीजें लिंक्ड है। अब एहसास से ही हमारे ऐब आ गए कि जब लड़ाई झगड़ा आता है तो हम लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं, हमें क्यों लड़ना पड़ता है। मोस्टली यही होता है ना कि हमारा दूसरे इंसान से इत्तेफाक नहीं हो रहा होता, हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि नहीं जनाब ये सही नहीं बोल रहे, या कुछ ऐसे ही गलत है तो बस उन्होंने कह दिया। क्या ये सही है? आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को सही साबित करना छोड़ दोगे ना, तो सही साबित हो जाओगे। क्या बात कर दी इसने, ये बात है। और ये इस तरह से है कि सही सही होता है, चाहे आप उसे कितने ही गिरहों में बांध दें, चाहे कितने ही पर्दे डाल दें, वो हर पर्दा हटा के सामने आ जाएगा। और झूठ और गलत गलत ही होता है, चाहे हम कितना ही उसके लिए लड़ लें, कितना ही उसके लिए बहस कर लें, कितने ही लोगों को खुद से दूर कर दें कि वो हमें गलत साबित करना चाहते थे। अगर आप सही हैं तो मान लीजिए सही है, जब आप मान लेंगे ना
तो दुनिया भी मान जाएगी। चलिए इस खूबसूरत सी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत सा

उम्रा लगियां पापा पा जी बिल्कुल। आज हम उस्ताद असद अमानत अली खां की खूबसूरत सी आवाज़ सुन रहे हैं और उस्ताद असद अमानत अली खां के बारे में मैं आपको बताते ही चलूं कि वो पाकिस्तान के फेमस क्लासिकल सिंगर थे और उस्ताद अमानत अली खां के बड़े बेटे थे। इनके छोटे भाई शफकत अमानत अली खां को हम अभी भी सुनते हैं और उनके क्रेडिट पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसके जैसे कि उम्रा लगियां, उसके अलावा इंशा जी उठो, इसके अलावा बहुत कम उन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं फिल्म्स में, एक दो मूवीज़ में भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। तो आइए सब मिल के सुनते हैं उनकी ये खूबसूरत सी गज़ल और याद

जब ये खूबसूरत सी आवाज़ को सुना जाए तो दिल नहीं करता और दिल नहीं बढ़ता, और दिल करता है कि सुनते ही जाए। जी, उस्ताद असद अमानत अली ख़ान की आवाज़ में ये खूबी थी और ये ख़ासियत भी थी। उन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक नाम कमाया, एक मकाम बनाया। ताल्लुक़ उनका पटियाला घराने से था, लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जब वो 10 साल के थे तो 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ट्रैक जो था वो रिकॉर्ड करवाया था। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्लासिकल मौसीकी जो है वो कुछ दिनों का खेल नहीं है, हम उसको कुछ घंटों में नहीं सीख सकते। इसके लिए रियाज़तों की ज़रूरत होती है जनाब, गले की सफाई, और फिर जो राग होते हैं उन पे जो अबूर होता है वो एक ख़ासा मुश्किल काम है। अब रागों की बात आई है तो मैं आपको थोड़ी सी बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो क्लासिकल मौसीकी है उसको सेफ रखने में हमारे एक बहुत बड़े फ़नकार हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल मौसीकी में। और क्लासिकल मौसीकी के बारे में मैं आपको ये थोड़ी सी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि क्लासिकल मौसीकी के बहुत सारे केसेस जो हैं, एक जैसे कहते हैं ना ज़खीरा, वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर के पास था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बारे में भी अगर आपको नहीं पता तो वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करती चलूँ कि वो पाकिस्तान के बहुत फेमस कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे, इसके अलावा राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। और उन्होंने बहुत ही हिट मूवीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को देख दी हैं। हीर रांझा जैसी मूवी आप देखते हैं जो 1970 को रिलीज़ हुई, और वो जो वंजली वालड़िया, तो ये सारे सॉन्ग जो हैं वो उनके कंपोज किए हुए हैं। क्लासिकल म्यूज़िक में उन्होंने एक पूरी कैसेट दी थी और पूरी कैसेट में राग माला और इस के बहुत सारे राग जो हैं वो उन्होंने महफूज किए हुए थे। तो जनाब ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, और अब हम चाहते हैं कि एक खूबसूरत सा ट्रैक आपको सुनाएं। सो

अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मिल जाएं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ये खूबसूरत सी आवाज़ पता है किसकी है? जी बिल्कुल सही किस किया आपने, तसव्वुर को खानम की खूबसूरत सी आवाज़ आप सुन रहे थे। तो बात यहाँ पे हमने अभी अभी की कि कुछ चीज़ें मिल जाएं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब कुछ चीज़ें चली जाएं, हाथ से निकल जाएं, तो बहुत दुख भी होता है। और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, कभी कुछ आता है कभी कुछ जाता है। हमेशा ज़िंदगी एक सी नहीं रहती, हमेशा हम गलत भी नहीं होते, हमेशा हम सही भी नहीं होते, हमेशा ज़िंदगी में सुकून भी नहीं रहता और हमेशा बेचैनी और बेसुकूनी भी नहीं रहती। एक बात जो है वो हमारी ज़िंदगी का अव्वल दिन से हिस्सा होती है, और वो होती है क्या बात, ज़रा सोचिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं बताना, मैं चाहती हूँ कि ज़रा सोचिए। सोच लिया, क्या होता है जनाब? आप खुद होते हैं, वो आपकी ज़ात होती है। सब चले जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे, लेकिन साथ रहेगा हमेशा आपका। जिंदगी को आसान बनाना है या मुश्किल, सुकून लाना है या बेसुकूनी, ये तो आप पे है ना। आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो। जिस तरह आप यूँ कह लीजिए कि आप एक मकनातीस हो, और मकनातीस में ये खासियत होती है कि वो लोहे को जो है ना वो अपने पास खींचता है। तो आप एक मकनातीस हो और वो जो लोहा है ना, वो मुश्किलात हैं और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें जो हमने सोची भी नहीं होती, वो कुछ ऐसे हालात और वाक़यात हैं, और उन्होंने मकनातीस के पास आना ही है। तो ज़रा सोचिए, क्या चीज़ है जो सही हो सकती है, सही कर सकती है इन सब चीज़ों को? सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आप ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, ये आपके बस में है। और ज़िंदगी तब आसान हो जाएगी जब एहसास और आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। आप सुन रहे थे प्रोग्राम दियारे गज़ल, मेज़बान सुमहरा सगीर के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। और छोड़े जाते हैं नूरजहाँ की खूबसूरत आवाज़ के साथ आपको।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या मानी मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो, ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. Ki duniya, ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir udne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।